पौने 11 बजे शुरू होने से गार्सन जिम्नेजियम बाहर। चिसो चिसो ब्रिजेश श्रेष्ठ र हकिमको गीत सुन्छौँ अब हामी।

Dusola pa Nepal basaya jazo Nepal ni ne ta chuna di pin sakkal sita dunugalan sen la sakusa jazo sa ji rashmila prajapati sin pratek mangal ba yinasya peta I ni se nyata I ta ko nyana jai di gudu thoya di ni se khote tho Nepal sambat 1146 gula tho dwadasi थुनिया मंगलवार दिन अले आ छितो ठीक न ख च खन वइगु दु आ वइगु शुक्रबार तसै गुला थो पुनी वा गु पुनी जुल अले वया कने खुनु गुलागा पारु सापारु अले गुलागा द्वितीया खुनु मतिया यले कथाहरु पछै वइ अले मेगु वाले कृष्णाष्टमी दु अले हाक्न वया लिपा चाहिँ मेगु विविध न ख च ख चाहिँ अस्वत्तु समा वला ले आए वइ दिने या लास तुसी मेगु महिना नेपाल सम कथन मेघ महिना अलि नेपाली कथन मेघ महिना लागो दु यसा नख छ खति त ठीक भइ छंगु दु बाला गर्न ख त हना दिस विशेषण गुण पनि आनि हने भइ छंगु गुण पनि या लस्ते ठुसी ख्याल का सन जुइ दु अलि ज्या जस सिक पेस सुगे ख ख निवास सम बुख त तेगु अलि निवा मे त ह्या के गजि वे क्रमे दक्ले ढपांगु मे जिते तेना ज्या जो नेपाल एसा

जाजो नेपाल सिने नाचमा दिला जुना खरस मिला जाजुसा आजि बुख बाखी भने द क्लेन हपाङगु बुख नेपाल भाषा एकेडेमिया बुख नेपाल भाषा एकेडेमिया गुसाले सूचना संचार व प्रविधि खेले नेवा ज्याजो छलाबुला व झिगु दायित्व विशेष छगु सहल मुज्याजुल शनिबार एकेडेमिया सभा कक्ष खिपुली जुगु ज्याजोले बागमती प्रदेश या भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री शैलेन्द्र मान भट्टाचार्य मु पहाँ कथ झाइदिगु ख ज्याजोले नोवासे मन्त्री भट्टाचार्य थम मचा निसेन येना वया छुनागु दमन थौतकन जुया चुङ्गु व उखिया विरोधे थम स्वतस्फूर्त रूप भाषिक आन्दोलने बोधिकया छुनागु व वैगु दिने अजन उखिया त निरन्तरता बिया बनेको प्रतिबद्धता न फङ्का दिल एकेडेमिया चान्सलर मल्लकी सुन्दर्या सभापति ते निहागु ज्याजोले एकेडेमिया प्राज्ञ दुज निर्मल

कार्टन लसकुस ज्याझो नेपालले छ नेपालले ज्याझो छिंगेना छुना दिला ज्याझो नापद गुड लाइफ बिस्किट्स जुगुना खरस मिला ज्याझो ससिक पिसन शुगु खय खट के जिस चाहिँ नेवा सुस बुखन त तेगु अले नेवा मेत ह्या के गु याना वछुना गु ख अवे क्रमे जि हकनो मेगु बुखन ते देना थो बुखन भाषा थैंती मानन्दर गुथिया बुख ख थैंती मानन्दर गुथिया हना ज्याझो या बारे बुख थैंती मानन्दर गुथियार समाज गुखिया त थहिती मानन्दर गुथी गाना देखेको या थपिनेगु नासा पुजाया विशेष हना ज्याझो यासे कोचाल गुथिया नायोलिसे केन्द्रीय मानन्दर संज्ञानी वर्तमान सभापति नारायण दास मानन्दर या सभापति दुई जुगु उगु ज्याझोले थिति व्यक्ति पिन्त हनेगु जान जुगु ख कोरोना काले सी गुथिए दि ढुङ्गुगु गुथी हक्न पुनर्जीवित याना गुथिया त चलामान याना दिपी सी गुथिया च्याम दुज गुथिया त दशकौ निसे मध्यक सरसल्लाह बिया बना छुना दिम गुथिया उपाध्यक्ष द्वय लक्ष्मीदास मानन्दर प्राध्यापक डाक्टर श्रीरत्न मानन्दर व गुथिया आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा गुहाली याना छुना याना वया छुम गुथिया दुजले से ये महानगरपालिका प्रवक्ता एवं सत्र वडा अध्यक्ष नवीन मानन्दरले से केन्द्रीय मानन्दर सँगै निर्वाचित पदाधिकारी बिन्द विशेष हनिजा यागु ख अथे ज्याझोले गुथिया सांस्कृतिक खेले चुना गुथिया दाफा भजन व बाज्ने विशेष योगदान दिन दिपी केन्द्रीय मानन्दर सङ्घीया बुधिया लस्ताजुगु थिति कासा सांस्कृतिक ज्याझोले शिर्पा त्याका दिपी गुथिया दुजपिन्त खेस ग व हनापो बिया हनिजान यागु ख जस आफ्नो जी मेगो बुख स्वातेन खला बुख चाहिँ यो हेदु आजै जितो बुख सिमेन सुतजल तला धिना चङ्गु सम्यक न्याके त साक्य महाविहार सङ्घ नेचिलेगु जुगुदु साक्य महाविहार सङ्घ या झिन छकोगु स्थापना दिवस लस्त्या आइतबार छगु ज्याझोझुल संज्ञा नाय शुभकाजी साक्य या सभा नाय सुई जुगु उगु ज्याझोले संज्ञा मु छान्जे सङ्गरत्न साक्य लस्कु स्यासे मु नुग ख तया दिल थोहे झोले वेकल साक्य वंश या उदय लिसे कया थौया अवस्था साक्य तेगु स्थिति बारे न खन्यथना दिल अले सङ्घ निसोने ढुङ्गा ये दुने साक्य समुदाय पाखे जुइमागु आपाल ज्या यानागु ख कन दिल ज्याझोले संज्ञा कानुनी सल्लाहकार ज्ञान रत्न साक्य छगु इले साक्य समुदाय या स्थान तत्सक चुएला नचुङ्गु ख सलिपावना थिथि शासक तेगु पाले वो स्थान मो जुया वङ्गु ख धया दिल ज्याझोले नोकुपी अमिरमान साक्य गौतम रत्न साक्य पिन्स महाविहार संज्ञा थिथि पक्ष या खन निभया दिल सबनाय शुभ काजी साक्य थोस सङ्घ नि सोने ढुङ्गा दे दश पञ्चदा ज्याझो व तदनसे दिना चुङ्गु बरे भे यानगु खकना दिसे त्यो के साक्य समुदाय मुनु त थव थवे परिचित जुइत गुहाली जुगु व सङ्गठित जुइत गुहाली जुगु ख कना दिल थोए झोले ये सम्यग्दान पर्व न दिना चुङ्गु ख वाचाका छु यी न्ह यया महाबुद्ध बिहारे बचा धङ्गु सम्यक व पञ्चरा ज्याझो झुगु या त उल्लेख यान दिलसा महानगरपालिका या गुहाली थुक्से घ्याजाको सहनु खुनु तजिक सम्यक महादेव पर्व झुगु गोसा गोया चुङ्गु व उखी साक्य महाविहार सङ्घ सक्रिय रूप जुया चुङ्गु खन कन दिल ज्याझो स मेमेगु न बुखन त पक्का नदु हाक्नस मेगु बुख पाखे हुन्थेना थो चाहिँ गुला धर्म यो बाख हजुर स्वम्बी परम्परागत बाजाले चाहिँ पूजा आजा सुरु जुगुदु स्वम्बी मधुपी थतिथि पिन्त पिनेगु लुमन्ती विशेष पूजा आजा यागु धार्मिक ज्याझो त जुया चङ्गुदु दक्षिया दुने मधुपी थतिथि पिनेगु लुमन्ती बौद्ध मार्गी पिन सम परम्परागत बाजाले चाहिँ स्वम्बी पूजा आजा यागु याना चङ्गुदु श्रावणीय नपाङ्गु पूर्णिमा निसे भाद्रया नपाङ्गु पूर्णिमा त कन्याकीको गुला पर्व या झोले सोनिगया भक्तजन पिन्छ स्वयम्भू महाचैत्य परिक्रमा याना विधिपूर्वक पूजा यागु यही अले नेपाल सम्बत या गुङ्गुगु ला कथ गुला पर्व या त पुण्य सञ्चय यागु पवित्र ला कथ लक्षित तक हनेगु यही गु या अर्थ पुण्य देखेगु वा ला या अर्थ महिना ख गुला पर्व बुधिकाइपी भक्तजन पिन्छ धार्मिक ज्यायाना पुण्य सञ्चय यागु व थौ क्षमता कथ दान यागु परम्परा दु थ अवधि जीवन या त शुद्ध व सदाचार या त थिथि नियम पालना यही लक्ष्य तक धर्म अनुयायी पिन्स पशु या त नोक्सान मयागु म बिगु सामानका मते मुख ल्या मते लागुवास व एला सेवन मयागु तजागु खाता मदिनेगु मनोरञ्जन मयागु इले हे नेगु अले तिसा वस म पुनेगु ब्रह्मचर्य पालना यागु थिजागु अनुशासन
पालनायै स्वयंभू व्यवस्थापन व संरक्षण महासमिति स्वयंभू व जखया लागा सुसुकुचु यासि रंगतेगु मतजडान याना लक्ष्यंको जुगु गुला पर्व या गोसा गुएगु ज्या यागु महासमिति दुज राजु लामा जानकारी बियादिगु दु वे कया कथा सुनि गय तिथि थासा भक्तजन पि बाजन थाना स्वयंभू भया पूजा यागु व पूजा लिपा ग चाहिलेगु यही तो गचाइलिगु छिपै गुलि साइदे खो आज पे चाहिँ नपा जिमिगु छ मरि जु भले सिधे सिधे लछि अंक गुला भले चाहिँ तस्क गुला लछि हो भने न भले गुला लछि आउ भले चाहिँ बाजा थाइ पिन दु तर आथि यो को मरु बाजा थाइ पिन मए तर मनु त चाहिँ मए मला 3-4 बजे से जिमो ठ्याके मरि बोले लागु छ ज्या 3-4 बजे से चहल पहल सुरु जी तर जिमिदास 5 बजे थी मने गुसे याना आज अब टुटे जुला तापक तापक लाटा मला तर न गुलाबले छनु न छनु चाहिँ ठिंकेमा धैगु चाहिँ छौ दुनी अजागु विश्वास चाहिँ मको तर अजागु छौ दुनी अब सिमरेको छौ चलन ठिं चाहिँ ढुका यसै वो चलन चाहिँ जी आतकमा निर्वा यान सुना गएरु छिपेना चाहिँ दिसा विशेष जना गुलाबले स्वयं विश्वते जाए जाए दिल रास अनि यो लुए एकदमै फरक जुइस एकदमै बिस्क लु छि होइन सेखरी दासी जाजु साखमा जी मेरो विश्वास